आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।

नवे वरजे नवे हेले नवे खुशाले। द मरगानो ख्वाग आवाजुना आओ द फिजा ताजा सकुन। दा वक्ते चि खपल ज़रत सकुन वरकड़े औ खपल वरस पख सोच सरा पेल कड़े। राजे चे योशु द खुशाले द मुस्का औ मुस्बतु खबर सरा। तासो अवरे रेडियो अमन 88.4।

अच्छा जी, सर सर बासो बेक टू बेक कॉल बाल मैसेज बना पा देखिए सही था मैसेज बहुत अच्छा मिलेगी और दस्तासो चिकुम यानी कॉल्स रवान दी कॉल्स बेक टू बेक अखिस्तलीशी और कना नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो। अस्सलाम वालेकुम।

0: हाँ जी सर, अब नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी दावत सुख दे उदा किम जुना आयमा खटक खबर कई दख रखना आयमा खटक दारा तो वह संग तासो ख बरोबर तबियत सेहत मिजाज वड़ू किस तरह मशीरान कशीरान टोल शदी के ना अच्छा तू मतलब फर्स्ट टाइम कॉल करे मख कितने दे करे नंदे को खबर
1: हो
0: चलो सही शोला खुची जो रक्षा हुआ नो चित मिलान इलान न दर पसी कड़ा ची मिसाल रेहान भाई रक्षो वाला ची चरता ही चा सरप मतलब दल तैर वाला जो अच्छा हाँ हाँ चलो बस ठीक था उस तासु बिल्कुल सोमवार बुध जुमेरा तो हफ्ते पूरी शिकुम दी बारह एक बार बुदा प्रोग्राम तासु और भाई ठीक था क्या
1: ना
0: ओ इंशाल्लाह प्रोग्राम बदरते की गई और तीसरा सर आप आवाज किस तब्दीली होना दुर्गा लेके ना
1: सलाम
0: ओके दा जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच।

ओके जी, 5 सेकंड के न न चार मैसेज ओकरो बैल खोल छे रकीब हटक मैसेज ओकरो समदस्ती मैसेज ओकरो रकीब हटक प्रोग्राम के तो वेलकम यहाँ हर कल दे तब यहाँ और में यही कहना चेराज भाई गाना दा प्ले का थोड़ा झमो की देना जरा ने से वाच वार की वो ढेर तेज फास्ट होगा देसा दागा दे प्ले में क्रशा रकीब जो बोलते हैं वो करते हैं शाह चे ओम में वेलकम ना चे 5 सेकंड के ना ना ना छा मैसेज ओगड़ो अगर गाना बोलता लागी जी बिल्कुल तो मैसेज ओगड़ो और देता हूँ मैं लगा वाला शाह

जो बिल्कुल काल वो शामिल हो सा गाने न पास सीधा काल तरफ तरह सा 0927-291-292 गाना रसोरा लिश के और वाय यहाँ पर रकीब खटक के एक है ना जे राज भाई सारा दे वो नहीं चल वाला सा दास ना चेरो तो वही राज भी दाखो दे पहुँच उसका वाला सा रकीब और वाह

ओके जी, दस चल बोगो करा छेलेज के टाइम बचत बोगो। बिल्कुल फर्स्ट एसएमएस चेक करा रकीब हटक वही चीज मलक सिंह जी जेल चौक ना जी राज भाई दिल की गहराइयों से आपको खुशियां देते हुए अपने प्यारे रेडियो स्टेशन पर। ओके जी वालेकुम सलाम रकीब हटक, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच, वंस अगेन सो वेरी मच। नेक्स्ट भाई अस्सलाम वालेकुम स्वीट भाई जानी, दिस इज मी वन एंड ओनली योर फैन क्यूट रोशी खान, वेलकम वेलकम दिल की गहराई से हमारे मोहतरम हसूसी कदरदान नजर वाले स्वीट भाई जान को जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, थैंक यू सो वेरी मच। धूम्र इज्जत रुको बोलो यो जहान मनना।

ओके नेक्स्ट वॉइस इमिक्यूट रुचि खान स्वीट भाई जानी हवाल सलाम जमा कबूल का भी आप एडवांस के दर दवाया छे अख्तर थे मुबारक वालेकुम सलाम हैंड थैंक यू सो वेरी मच खैर मुबारक क्या अख्तर ढेर लरे दा यो जहान मनना थैंक यू क्यूट रुचि खान क्यूट बहना वो नेक्स्ट रखिए भाई भाई जिंदगी में किसी की मदद करके देख लो अगर बाद में वो दुश्मन न बने तो आकर मेरा गिरेबान पकड़ लेना वाजी वाह रखी बहु यो हाथ पर सही है शाह देर शाह नेक्स्ट रखी बहु जी हमने अपने दिल के दरख्त से किसी को नहीं निकाला जो पत्ते हराते खुद घिरते गए डेरा मकसद डेरा फलसफा दबा के डेरा दराना खबर उजदा खबर रखी बहु यो जहान मनना नेक्स्ट मी क्यूट रुचि खान स्वीट भाई जानी आई रियली मिस यू वाई छे मंडी दी लहबी दी लहबे शो मंडी दी बिल्कुल मंडी दी शाह जके मंडी दी के ना टेम काम है थैंक यू नेक्स्ट रखी फटक भाई जी हम अपनी इज्जत खुद बनाते हैं लोगों के सहारे नहीं जीते गुड जबरदस्त खुददारी इज द बेस्ट रकीब फटक भाई छे ये रूठने मनाने के काम हमसे नहीं होते हम तो अक्सर खुद सी ही उकताए रहते हैं ये दुनिया तो बात का कैसा है सो नेवर नेवर फॉर एवर रकीबा तो वेली छे नेवर नेवर हौसले तभी है फॉर एवर एवर रकीबो ये जहान मनना चरतना जोड़ दजड़े सरन से ओके नेक्स्ट भाई कहना चाह मैसेज करे ना भाई जी सलाम राज भाई जान संगे बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट जब मैं कजन तो कह रोकल है कजन में प्रोग्राम और तो प्रोग्राम डे जबरदस्त है ओके छे मी एम अच्छा मी एम ओके छे अच्छा सही रहा है तो कजन कर रोगल उधर है संदर है ब्याह दस अंदर है सरंगे बचा लो दागा सही रहा ओके छे

नेक्स्ट वाईची मेकिट रोशी हा स्वीट भाई जानी वा वा वा दा बुलबुल एंड कुलकुल दा चॉकलेट आवाज हो लके जी मुझे स्वीट भाई जानी दा थैंक यू सो वेरी मच क्यूट रोशी खान क्यूट सिस्टर दा गुलगुल एंड बुलबुल आवाज चिदा के दा रेडियो मन करे के दाशा ते मिसे ब्यूटीफुल करे के दाशा ओके नेक्स्ट वी मेक यू रोशी खान स्वीट भाई जानी तुम्हारे वो लव्स भी तोहफा है जो किसी को आगे बढ़ाने का होके हौसला देते हैं ओके से धीर अक्षर खबर है थैंक यू सो वेरी मच मेक यू रोशी खान स्वीट भाई जानी है लगता है ये ईद से पहले आखिरी शो है दूसरी शो तो ईद के सेकंड डे पर आएगी हो गया ना ईद शेड्यूल पर जुड़ी सीखना शो विशा हाउ नन हो बेचार रहे ना ईद रो रहा चिदा से वशे बड़े रिवे चिदा से वशे वाला रेसिपी वगैरह शामिल है क्यों अच्छा दासी चल बो कहना चाहिए सही कल तरफ तब सो सके नोरा वो भी बात के शामिल हुआ सही रहे कहना तो एस एम एस रो रहो नोरा ब्याह देखते शामिल हुआ बात की यो एस एम एस चिदा बना प्रेस दवा ठीक है।

ओके जी, नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, वेरी गुड। तो सिग्नल चार वफा नखो।

Next by Jimmy Kutu Jahan, Sweet by Johnny. अच्छा कहना रेसिपी रेडीमेड चटनी वाली मटर पली अच्छा मोम पली धनिया पुदीना ग्रीन मिर्च उवीजा दाबो वटा कवे बियाबो मस्ते वेर वचा वे और रेडीमेड चटनी चला हर रेडी हो गई ओके जी थैंक यू सो वेरी मच क्यूटर जी हाँ थैंक यू सो वेरी मच

0: जी शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम से यूज लीबिया वेलकम हर कला खुश आमदीद तड़ी माशे पखेर रोमी आर जे शाहिद खान यूज लीबिया दर तम खातिर उस तुसे टेलीफोन कॉल्स बिल्कुल उखला बिल्कुल रुशई पर 0330-0344-717 यानी 0333-0333-0333 कलर तरफ तसी सुक तिर सराय किम जी ने कॉल करे सवेल गोड़ी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी सो खबरी कई दिकुम सीना
1: शफा तय खबरी दो लचरा
0: शफा तय

हाँ जनाब बड़ी का इरफान गुल्ला हूँ चरंगे ये सही है ला ला ला ला ला ला ले ला ला ले ला ला ला ले वीरा का सामला आर वक्त दे चुकी वहाँ दुस्तर के गाड़ा वे नवड़ी का इरफान गुल ठेरा ठेरा मना आधा वोट इरफान गुला अला अला सही है इरफाना बिल्कुल कला कला करना वर्क से पाथा देना वाला परिंदा टेलीफोन अरवा कब ब्याज टेलीफोन अरवा खाना कब यार ना पट से ओ अजी गोला तो ता खुदा वाट वाट सालोमीना विशा ओहो अजी गोला फाशुल दे गुड़ा बुद्दे गुड़ा देर देर मनना देर

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: द खरक पर तरीकी और मयारी इलाज लपारा दरमान होम्योपैथिक क्लिनिक की डॉक्टर मुस्तफा कमाल सेब नास्तवी। डॉक्टर मुस्तफा कमाल सेब होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड के देश काला पूरे तजर्बा लरी और तीसरा करक के हम देश पक कालाना कारकवी। द डॉक्टर मुस्तफा कमाल से पानीग्रहण की द मुख्तलिफ बीमारियानो इलाज की गई लक असाबी कमजोरी असाबी दर्दना मुख्तलिफ किस्म एलर्जी द बदन पारसोब द सरमनी बीमारियाने बेवख्ता विश्तान स्पेने दल विश्तान गुर्जी दल द नरीना और जनाना द बे औलादे बीमारियाने और द जनाना रसूले द ट्यूबोनो बांदेश द मशुमानो जहनी कमजोरी द जिगर द हराबेदो पवजा द बारातल बदहजम द कुलमो स्वजेदल द कुलमो टीबी खूनी औबादी बवासीर पेचस प्रास्टेट द त्रिखी कानी द त्रिखी सोजश द त्रिखी परसोप द गुर्दो कानी द गुर्दो सोजश द गुर्दो खराबेदल द खपो तले स्वजेदल द खपो परसोप औ द खपो दर्दुना खलो उचेदल द मैदे स्वजेदल द मैदे केस औ वरसरा वरसरा यूरिक एसिड औ द बदन द दर्दुनो सरासरा द जुड़ुनो द दर्दुनो इलाज की। द मशरानो और बेवसा खलको द पारा खसूसी रोयत हम डॉक्टर से वर्कवी। दरमान होम्योपैथिक क्लिनिक पताए तबलीगी मरकज करक नजदे खुशाल खान हटेक यूनिवर्सिटी हीरो जनरल स्टोर तमहमख रबते नंबर ये दे 0301 2 1 3 यानी 0331 12 12 413।
2: आपकी पसंद आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज़।

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज़।

मैं शिव बिल्कुल चर्चा चर्चा मिल रहा अभिजीत के सुपर हर लिसनर समय ने बिल्कुल टोल और अभिजीत के प्रोग्राम शेयर कलाई से निमाश गई और वेलकम नेवल केवी नेवर तो गई और न बिल्कुल डेर जो तो दिमिश मो शरोन के शरोन हम जोली बुडा गोनी यावर सरसरा दस अरविंद की दस लिसनर से बिल्कुल दे जोड़े देने ना सराओ बिल्कुल ऐसे अटैच यू ना बिल्कुल लला प्रोग्राम पर इंतजार करावी ना बिल्कुल लला चले किमने कहना लला बिल्कुल नरगा इन लला पोजीसी किमने कहना ये ने सदर सर जो बिल्कुल अरविंद के लिसनर समाइन तो अरविंद के प्रोग्राम से बिया ना बिहार का लाइव है जी बिल्कुल चर्चा चर्चा मेरे लिसनर दी समाइन दी ये वड़ के मैसेज जरूर बताओ के कहना बिल्कुल

टेक्नोलॉजी बिल्कुल अरुदिंग के प्रोग्राम से कलर होने से बोने था मौका फिर कई बस हजार या बने 09272921292 बेहद बेहद मनाना

जी बेचे बिल्कुल प्रणाम बिल्कुल मैं से रोली दिखे ना रखी बे खाट के दे मलिक सिंह जी जेल चौक ना मुझे भाई अब इसी दिल की गहराई से आपको खुश आमदीद कहते हो देर जो तमन्ना यो हो जहान वाला ओ सलाम ये अच्छा साईं वजीर अच्छा सलाम टू ऑल लिसनर ओचे मजबूरी मत बताओ मेरे दोस्त तस्लीम करो बेवफा हो तुम देर जो तमन्ना यो जहान वाला बेहद मना चाहे जुबा खटक चलो में वेरखा अनमोल खटक था उजाला खटक था मनायल खटक था दुनिया वजीर था वसमसीब था नूर एंड अनिता वो दे सर सरा सानी खटक था गुलूनी था वसमसीब था वो तारा खटक था वो होरेन खटक था वो सारा खटक था मानो खटक था हादिया खटक ना दे बहार उजाला मरवा सुम्बल खटक ना दिया खटक नूर खटक आयशा खटक ओ फिजा खटक खुशखबरी खटक आईना खटक मासूमा खटक आसमा वजीर था जन्नत वजीर था हनी वफा था ओ गुला लेता चुटी खटक था ओ हुरेन सुरानी था फौजिया था खटक था सलाम वालेकुम सलाम देर जुता मना यो ना

0: वजह की मौत से बढ़कर भी एक सजा होती है, मौत से बढ़कर भी एक सजा होती है अकेले बैठकर बैठी हुई वक्त को याद करना। अच्छा
1: हाँ।
0: तो जमाना यो जहान।